0: ओ निर्गाजी भाइ कता हो? केटाहरू लिएर पुरा बेहुलिन जानला है के हो?
1: होइन हो दाजु, माथितिर यसो गाउँतिर पुगौँ कि भनेर। ल दाजु, टाइम पनि छैन, लाग्यो है त।

भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो गण्डकी प्रदेशको एक अग्रणी उच्च शैक्षिक सामुदायिक संस्था QAA मान्यता प्राप्त आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँमा शैक्षिक सत्र 2083-84 को लागि वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीए बीबीएस र बीएड नेपाली अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान र सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीबीए र बीआईसीटी मा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले समयमा नै प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्स फार्म भरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नु हुन सूचित गरिन्छ। बीबीए को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 19 गते सम्म। बीबीए को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 श्रावण 23 गते बिहान 8 बजे। बीबीए को कक्षा सञ्चालन त्रिवी अनुसार। बीबीए को जम्मा सिट संख्या 66 जना। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 25 गते सम्म। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 भाद्र 5 गते दिउँसो 1 बजे। बीआईसीटी को कक्षा सञ्चालन 2083 भाद्र 31 गतेदेखि। बीआईसीटी को जम्मा सिट संख्या 33 जना। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा फारम 2083 असार 24 गते सम्म। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा 2083 असार 25 गते बिहान 8 बजे। बीए बीबीएस र बीएड को कक्षा सञ्चालन 2083 श्रावण 5 गते सम्म। क्याम्पस प्रमुख आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँ। विस्तृत जानकारीका लागि वेबसाइट www.adikavicampus.edu.np। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस ब्यास 1 विज्ञान चौर तनहुँमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 0665900096, 98562-67097, 98562-2528।

0: दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक आवाज।
1: वॉइस ऑफ डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन।